0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरूपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलो हर्चमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता समय यस बेला बिहानीको 7:05 भइसकेको छ। हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज लिएर। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत तथा सांगीतिक अभिवादन जनाउँदै पहिलो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं चलचित्र आ गले लग्जाबाट कलाकार किशोर कुमार र लता मंगेशकरको आवाजमा। सन् 1973 सालमा बनिएको चलचित्र आ गले लग्जाको निर्देशक मनमोहन देसाई रहेका छन् भने निर्माता एके नाडियावाला रहेका छन्। यस चलचित्रमा कलाकारहरू शशि कपूर, शर्मिला टेगोर, मास्टर टिटो, ओम प्रकाश, शत्रुघ्न सिन्हा र जगदीपले मुख्य रूपमा अभिनय गरेका छन्। यस चलचित्रमा गीतहरूमा संगीत भरेका छन् साहिर लुधियानवीले। त श्रोता स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको यो पहिलो प्रस्तुति।
3: त्रेता के श्री राम चन्द्र

0: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले अहिले सुनिरहनु भएको छ पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताहरूले आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज, जस अन्तर्गत यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौं सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। कार्यक्रमलाई अगाडि बढ़ाउने क्रममा अब अघिल्लो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं चलचित्र आज की ताजा खबरबाट, गायक किशोर कुमारको स्वरमा। यस चलचित्रको बारेमा छोटो जानकारी राख्नुपर्दा, चलचित्र आज की ताजा खबर सन 1973 सालमा पहिलो पटक दर्शक सामु आएको थियो, जसका निर्माता र निर्देशक दुवै राजेन्द्र भाटिया रहेका छन्। कलाकारहरू किरण कुमार, राधा सालुजा, पद्मा खन्ना, आईएस जौहार, अर्पणा चौधरी, नरेन्द्र नाथ अनि महमूदले यस चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। चलचित्रका गीतहरूमा हसरत जयपुरीले संगीत भरेका छन्। श्रोता स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको यो अघिल्लो गीत।
5: मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती

0: बनाएं। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
7: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
6: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
6: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन

0: क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: दे आर ऑल डिजाइंड इन इंडिया नाउ।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सहित। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
4: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्युरेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 47,000 करोड़ रूपीज इन ओडिशाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट टुडे। Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. सेबी क्लियर्स चैनल फॉर

यो आकाशवाणी गान्तोकको अब सुन्नुहोस् आजका मुख्य समाचार पुनः एकचोटि। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको अध्यक्षता

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स और मैं हूं आपके साथ भावना। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868687 5 3। तो फिर देर किस बात की है, भेजिए हमें ईमेल या करिए व्हाट्सएप। ये लीजिए, आ गया है हमारे पास पहला ईमेल। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम का, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु नई दिल्ली से हमसे जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं। ये

आकाशवाणी के साथ हमारा दिल लगा हुआ है और हमेशा हम दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत खुशी से सुनते हैं। ये हमें कृष्णा जी ने लिखकर भेजा है और इनका संदेश हमें मिला है राजस्थान से। राजस्थान में कहा ये इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। महेश अग्रवाल और मीना अग्रवाल जी का बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे पास संदेश आया, बहुत ही प्रेम भरा संदेश है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, कितिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का संदेश भी हमें मिला है, इनकी पसंद का गीत भी हम सुनवाएंगे। और सुखविंदर सिंह जोड़ा साहब हैं, सीटी दीवाना इनके साथ हैं, कृष्णा पार्क दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है, इनकी पसंद का गीत ये।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: .1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है दिल का मेल बॉक्स। कृतिका का संदेश हमें मिला है जनकपुरी दिल्ली से, और हिमाचल प्रदेश से हमारे पास संदेश आया है वैद्यराज जी का। अपनी अपनी पसंद का ये गीत सुनना चाहते हैं। फिलहाल जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो है बोधराज खोरवाल जी उत्तम नगर दिल्ली से, जो हमने कहा था कि इनकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे, ये रहा।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आदाब नमस्कार जी, ये संदेश हमें मिला है दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में जसपुर उत्तराखंड से। रियासत हुसैन सिद्दीकी हैं, नाजमा बेगम सिद्दीकी हैं, रियाज हैं, रिफाकत हैं, मोहम्मद रिहान हैं, समरीन परवीन हैं, माहिरा नूर हैं और कहते हैं किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिएगा। क्या बात है आपकी। इसके अलावा हमारे पास ये गोयल साहब का संदेश आया है, रोहिणी दिल्ली से। सतप्रकाश गोयल हैं, रेणु गोयल हैं, लिखते हैं मेरी हसरतों की दुनिया तू मिले कहीं जो मुझको, तू मिले कहीं जो मुझको, सीने से लगा लूं तुझको। ये बहुत ही खूबसूरत सी शायरी या कहें कि शेर इन्होंने लिखकर भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा और कौन है हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप मक्कड़ साहब हैं, इन्होंने भी अपनी बात हमें लिखकर भेजी है, जलंधर पंजाब से इनका संदेश हमें मिला है। और तुलसी मस्कीन है, वीना मस्कीन है, आशीष राजा है, चैतन्य मस्कीन है, मेघा मस्कीन है, इनका गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से संदेश आया है। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, इन सबका संदेश भी हमें मिला है। बबलेश जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इनका पूरा नाम क्या है, बबलेश पवार है, डैनी पवार है, मनीष पवार है, ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश चौहान राम देवरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डांगरी से बाबूराम जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और नमस्ते इन्होंने बहुत प्यार से लिखकर भेजा है, तो नमस्कार आपको भी जी। इसके अलावा अफरोज शेख साहब हैं, इनका हमें ईमेल मिला है, एड्रेस नहीं मिला है, इन्होंने केवल अपना नाम लिखकर भेजा है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

दत्तरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, इनका संदेश आया है हमारे पास। गणेश जी का है हमारे पास संदेश। ये हमारे पास कहां से आया है? गंज डुंडवारा से हमारे पास ये संदेश आया है। शमसुल कमर राही है, शाहीन फातिमा है, अनु खान है, अदनान खान है, फैजान खान साहब हैं, और इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गणेश वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार का हमारे पास संदेश है। दिल्ली वालों का बोलबाला है FM गोल्ड में। इस प्रोग्राम का नाम दिल का मेल बॉक्स नहीं, दिल्ली का मेल बॉक्स रखो। क्यों भाई क्यों? कोल्हापुर से आपका संदेश आया और हमने पढ़ा, अभी भी नाराजगी है क्या आपको? अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ और कौन है? ये है रंजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांवकर, परभणी महाराष्ट्र, शिवराम नगर, बसमत रोड से हमें इनका संदेश मिला है। और कौन हमारे साथी हमारे साथ हैं? उमेश कुमार जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, अनोज कुमार हैं, सोनित कुमार हैं, खयाला से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने प्यार भरे संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन अब्बासी हैं, शान आवाज अब्बासी हैं, और फरदीन अब्बासी हैं, सुहान अब्बासी हैं, अरजान हैं, अबान हैं, और पूरा अब्बासी परिवार है, सरफराज भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा एक और संदेश पढ़ देते हैं। डिकोस्ट्रा फैमिली है, जॉन है, रोजी है, पोल है, विलिस है, जनकपुरी सहारनपुर से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार हम तक पहुंचाने के लिए। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देशभर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and the Prime Minister will visit Pahadpur village and offer prayers at Sacred Grove Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas today. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Living, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country, bringing together India's rich cultural heritage and yoga traditions. The main national celebration of IDY 2026 will be held at Kolkata's historic Red Road under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where he will lead the nation in the Common Yoga Protocol. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements, and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. U.S. Special Envoy Steve Witkoff is traveling to Switzerland as preparations continue for a new round of talks between the United States and Iran. According to media reports, the negotiations are expected to focus on a possible nuclear agreement following the recently announced Memorandum of Understanding between the two countries aimed at ending hostilities in West Asia. The fact-check unit of External Affairs Ministry has debunked claims on social media that Indian ambassador to China was summoned by Beijing to lodge protest over certain memes. It urged people to stay alert against such false and baseless claims on social media. In men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. Meanwhile, fast bowler Harshit Rana has joined the Indian squad for the final ODI after recovering from a knee injury. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. The victory lifts the South Americans to the top of the group on goal difference. Earlier today, Morocco secured a 1-0 victory over Scotland in their Group C match. Morocco took the lead in the very first minute through Ismail Saibari and held on to that advantage until the final whistle. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम तस्वीर, मैं हूं आपके साथ भावना, और आज हम जहां चलने वाले हैं वो है ऋषिकेश, उत्तराखंड के देहरादून में बसा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। पवित्र मंदिरों, घाटों, शांत आश्रमों और सदाबहार जंगलों से घिरे इस शांत शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है।

लक्ष्मण झूला जो है ना, यहाँ पर गंगा नदी के ऊपर बना एक हैंगिंग ब्रिज है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर गंगा नदी पार किया था। पवित्र गंगा नदी के तट पर त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट का उल्लेख महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी मिलता है। घाट के स्नान से पवित्रता और शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ ना यहां कुछ देर बैठकर पानी में मछलियों को तैरते हुए आप देख सकते हैं और उन्हें खाना भी डाल सकते हैं। आटे की गोलियां मिलती हैं, उनको लेकर कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं इन मछलियों को आटे की वो गोलियां डालते हुए। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप वो गोली डाल रहे हैं और मछली ऊपर मुंह करके लपक के उसको पकड़ लेती है। कैसे पूरा दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता।

बीटल्स आश्रम है यहाँ पर, जिसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है। रामझूला से 1 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के स्वर आश्रम में एक चट्टान पर बना है ये बीटल्स आश्रम। ये वही आश्रम है जहां 60 के दशक में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया था। उन्होंने यहां कई गीत भी लिखे थे और इस आश्रम के परिसर में एक पूर्व मंदिर, पुस्तकालय, रसोई, महर्षि योगी का घर और मेडिटेशन झोपड़ियां हैं। दीवारों पर रंगीन चित्रकारी है और यहां एक छोटी गैलरी भी है। इसके अलावा ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने यहां ध्यान किया था। और भी बहुत कुछ है ऋषिकेश में जानने लायक। सुनते रहिए प्रोग्राम तस्वीर।

जब भी आप ऋषिकेश आएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति सुकून मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ 13 मंजिल मंदिर, इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में 13 मंजिलें हैं। इसके नाम से ही समझ में आता है 13 मंजिल मंदिर नाम है। और आकर्षक सुंदर वास्तुकला है। ऋषिकेश अगर आप पहुंचे और आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो इसका मतलब आपका ऋषिकेश आना अधूरा रह गया। शिवपुरी ऋषिकेश की सबसे प्यारी और रोमांचक जगहों में से एक है, क्योंकि यहां ना आसपास घने जंगल और पहाड़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। यहां रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी बहुत खास है, साथ ही बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग ये भी यहां होता है। शिवपुरी आकर पर्यटक बीच कैंपिंग, पर्वतारोहण, जंगल की सैर और जंगल ट्रेकिंग भी करते हैं। बहुत खास है ये शिवपुरी यहां पर। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती

0: मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: .1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। ये प्रोग्राम है तस्वीर में हूं आपके साथ भावना, और ऋषिकेश की रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ऋषिकेश शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ये भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है ये, और ये मंदिर समुद्र मंथन की गाथा दर्शाता है। मंदिर में ताजे पानी का एक झरना भी है जिसमें स्नान करके भक्त मंदिर में पूजा करने जाते हैं। नीरगढ़ जल प्रपात, ये ठंडे पानी की एक सुंदर संकरी धारा है जो घने हरे जंगल के बीच एक चट्टानी इलाके में बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जंगल से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है। इसके अलावा आप इस जंगल के चारों ओर घूमते हुए वनस्पति और जीवों की बहुत सी प्रजातियां देख सकते हैं, और भी घाटी के आसपास मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज रेडियो तस्वीर हम बना रहे हैं ऋषिकेश की। कल कल बहती गंगा नदी के तट पर बसा एक पावन शहर।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा SIR अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
6: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म BLO-हरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
5: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
6: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
5: फारम ECINET एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
6: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।

ई कुसेनु कुरेन हिरेबेरो निसामिन सक्मा पोखेबेरो ए तायमले खाओत केमाक पासे थुम्युक पासे ई के गप पासे ए फेजुमनु फेया युतमे ओ याजाहा नुरिक लेतामे ओ ए फुंसारे कुङो केबोंग बासे खेमसिके पोंगमा चाहा बासे ए नहिनु सिखुम फुखेमे ओ तायमले थुमिया लोंदामे ओ ए निसम्मी मेनी मेबोंगनेन अल्लो मेंगर हिंगमन कुय थक पोंगलो ए खामाकमा लुम्मु खाओत लपमा सेमी इन हाम तामसिन चोकमा ए ककवा फुंगिन फेक्ते बारो नुनाम फुंग नुबा कुनाम सेरो ए कुजोक थिम केटले कुजा थोकलो निसामिन हिंगले सेमी ओतलो ए थुमसा इ केमा सकनिम चोकमा निसामिन पातले लाजे ओपमा ए निसामले कोकमा काक्तु बारो याबकले मिंगसो याक्तु बारो ए नहिनु सिखुम फोमा बोंगलो मेंगर यम्मु लाजो पोंगलो ए मेम्बापमा पानिन पेन्दे बेसंग सुतलानु पेन्सिंग पुरे बेसंग ए केरेक्नु लेपमी नाका बारो आदा अजेंग पेली वा बारो ए नांगजंगलुंग थोथो काकतुंग बारो ख्याली सामलो इन सुरुंग बारो ए ख्याली सामलो इन सुरुंग बारो ए ख्याली सामलो इन सुरुंग बारो।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुंझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात

होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आरडी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताजा करना चाहें तो लिख भेजें बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने वैसे ही बहुत मजा आ गया, क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे, बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा जरूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहां पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहां से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहां का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहां का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें जरूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकहीं झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे

श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था वो उन्हें याद आता है। और गजल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल है। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सफर में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहां पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग न जाने किस किस चीज की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए, कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है। जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी मां ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूं, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहां पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है।

उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताजा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें, और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है। बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहां का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हां, वहां पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस खत्म हुआ तो निकल पड़े और जोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर इंसान को सीखना जरूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर की बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूमकर यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीजों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहां तहां कैसे करके इंतजाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहां पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,800

0: 80 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ।

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृहमंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परम्पराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

0: संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन दो योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 नौ जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर में पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: शुरू होगा।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और आंतरिक हिस्सों, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है।

एफएम गोल्ड 100 दशमलव एक सुन रहे सभी साथियों को सीमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और शुरू होता है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है जी मन भावन। आपके मन को जो भाता है आप हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। अब आप मेल कैसे करते हैं? fmgoldair@gmail.com पर। और हम आपके जो संदेश हैं आपके अपनों तक पहुंचाते हैं और अपनों तक पहुंचाते हैं। कई बार आपका मन करता है कि आप अकेले ही कोई गीत सुने, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत वेलकम है जी, स्वागत है आपका। एक बार दोबारा सुन लीजिए fmgoldair@gmail.com। इस पर आप अपना संदेशा जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। और आज शनिवार की दोपहरी आपके साथ मन भावन प्रोग्राम में आपकी दोस्त सीमा वर्मा। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने दोपहर का खाना जो है यानी लंच कर लिया होगा और आप अपने रेडियो के साथ मुस्कुराते हुए हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। तो ये क्योंकि आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है, हर बार मैं अपनी पसंद का कोई गाना पहली बार चलाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपकी फरमाइश ही ले लेते हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल, इन्होंने अपना संदेशा भेजा है। और आप भी अपना इसी तरह संदेशा भेजिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपना संदेशा भेजते हैं और हम आपका संदेशा लेते हैं। लेकिन कई बार आपको भी बुरा लग जाता है जब आपका संदेशा नहीं पढ़ा जाता है। मेरी कोशिश है कि जरूर सभी के संदेशे लिए जाएं। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी साहब हैं, इन्होंने भी अपना संदेशा भेजा है। और इसी तरह मैंने आपके सारे जो मैसेजेस हैं उन्हें लेना है। और इसके साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत गीत भी सुनाने हैं। तो पहला गीत आपकी नजर करती हूँ, बहुत सुंदर गाना है, अपने जमाने का बहुत चर्चित गीत।

0: मीडियम वेबको 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलो हर्समा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै यहाँले हामीलाई 103 मेगाहर्स एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपमा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ आईसीएआर सिक्किमका विभाग प्रमुख डाक्टर अशोक कुमारसँग लिएको अन्तर्वार्ता।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार गांतोक का अंतर्वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार, हेड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सिक्किम का प्रमुख। और आज हम लोग चर्चा करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ स्पेशल फोकस टू सिक्किम अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट। सर, आकाशवाणी समाचार गांतोक का स्टूडियो में मैं आपको हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहता हूं।
3: धन्यवाद।
2: सर, पहले हमको बताइए कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय कृषि विशेषकर जैविक खेती के क्षेत्र में हुए समग्र परिवर्तन का आप किस प्रकार से आकलन करते हैं?
3: ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां सिक्किम में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। 2003 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ऑलरेडी यहां के प्रदेश सरकार ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके काम शुरू किया था, सारे इनिशिएटिव इन्होंने किया था। बट मेजर जो चेंजेस आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेशली सिक्किम के लिए, आपको पता होगा कि ये 2016 में जाके स्टेट ऑर्गेनिक
2: घोषित किया गया
3: हुआ है। तो जो गवर्नमेंट रही है इसका पूरा श्रेय जाता है कि इसमें केंद्र सरकार का पूरा रोल रहा है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने को, इसको वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
2: सर, सिक्किम विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे, और भारत के अन्य राज्य स्पेशली उत्तर पूर्वी जो बाकी राज्य है, अष्टलक्ष्मी का बाकी जो स्टेट से, इन राज्यों को सिक्किम का इस सफलता से क्या सीख मिल सकता है?
3: सिक्किम ऑर्गेनिक जाने के लिए सबसे परफेक्ट स्टेप 2003 में जो शुरू किया था, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग वैसे भी फर्टिलाइजर केमिकल्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सहायक कदम होता है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आता है। अगर आप कोई केमिकल या फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जो एक हम लोग बोलते हैं 3 साल का पीरियड होता है जहां पे फुल्ली इनऑर्गेनिक हो रहा है, उसको कन्वर्ट करने में 3 साल का पीरियड लगता है। उसके बाद जाके मिट्टी जो होती है 3 साल के बाद ऑर्गेनिक बोली जाती। तो यहां पे बहुत कम मात्रा में फर्टिलाइजर केमिकल यूज करने की वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक इनपुट हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए अगर हम उत्तर पूर्वी प्रदेशों को ऑर्गेनिक की तरह प्रमोट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ऑलरेडी यहां की जमीन में है, क्योंकि हमारे पास जंगल बहुत हैं, पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन इनरिच होता है हर साल। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपके सॉयल में ज्यादा है तो उसको हम मोबिलाइज करके प्लांट को अवेलेबल फार्म में दिलाते हैं, जो माइक्रोब्स या बायो फर्टिलाइजर इस तरह की चीजों से हम फुलफिल कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज पूरे नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में क्या है कि वही जो फर्टिलाइजर केमिकल यूज नहीं किए हैं तो इससे हम जो ऑर्गेनिक इनपुट डालेंगे उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं सबको अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना चाहें तो एक बहुत सराहनीय कदम होगा।
2: सर, एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन, दैट इज MOVCDNER, काफी महीने से चर्चे में है और हेडलाइन में भी आ रहा है। स्पेशली सिक्किम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को जो कृषक है, ये कृषक समुदाय के लिए ये स्कीम कैसे, ये लोग लाभान्वित हो रहे हैं स्कीम से?
3: ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के किसानों को और उनको प्रमोट करने के ही लिए बनाई गई है। क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे शुरू में अगर कोई इंटरेस्टेड किसान है जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ से जाना चाहता है तो उसमें होता क्या है कि 3 साल का आपका कन्वर्जन पीरियड होता है, और वो कन्वर्जन पीरियड शुरू होता है कि कोई ऑथराइज इम्पैनल्ड एजेंसी होती है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करती है, तो उसके अंडर उसकी देख रेख में वो इंस्पेक्शन शुरू होता है और 3 साल का कन्वर्जन पीरियड कंप्लीट किया जाता है। तो कोई भी इम्पैनल्ड फॉर्म है तो उसका चार्ज करती है, तो किसान अपने लेवल से बहुत ज्यादा तो वहन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उसमें सपोर्ट दिया जाता है एमओवीसीडी के थ्रू, जो केंद्र सरकार की स्कीम है। तो ये दो चार महीने की बात नहीं है, बहुत पहले से ये जितना ऑर्गेनिक सिक्किम में हुआ है फाइनेंशियल सपोर्ट मैक्सिमम मेजर सपोर्ट है एमओवीसीडी का, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक आज के दिन में ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर होने

0: में सफल रहा है। तो इसकी बहुत सारी स्कीमें जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई गई हैं, ये मैदानी इलाकों में आपको ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्कीम है और स्पेशली ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए है।
1: सर, आदरणीय प्रधानमंत्री सरकार गठन करने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड चालू किए थे जिसमें फार्मर को काफी लाभान्वित हुए है, और सर इस पे आपका राय जानना चाहते हैं कि ये सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी और भी जो कई सारे योजनाएं हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे लाभान्वित कर रहे हैं।
0: सॉयल हेल्थ कार्ड जहां तक बात करें तो सॉयल हेल्थ कार्ड खेती के लिए सबसे पहला कदम है। जैसे हम देखते हैं कि एक जगह पे कोई ऑर्गेनिक इनपुट देना है, गोबर की खाद अगर देनी है तो हम वहां पे 10 किलो भी खाद देने से काम चल जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टी में हो सकता है न्यूट्रिशन अच्छा खासा हो। दूसरी जगह हम अगर 10 बोरे भी खाद देते हैं, मतलब 100 केजी भी खाद दे देते हैं अगर, तो वहां पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। क्यों? कि हमारी मिट्टी जितनी है हर जगह पे इसका न्यूट्रिशन का वेरिएशन होता है, सॉयल न्यूट्रिएंट स्टेटस वेरी करता है हर जगह। तो इवन एक ही खेत में एक पार्ट में न्यूट्रिएंट का स्टेटस कुछ और होगा, दूसरे पार्ट में कुछ और होगा। तो इसमें सॉयल सैम्पलिंग किया जाता है तो एक पार्टिकुलर ग्रिड बना के वहां का न्यूट्रिएंट स्टेटस लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि उस खेत में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है जो हमें खेत में देना है। मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर मात्रा में है, तो ये सब उतना देने की जरूरत नहीं है, उसमें जिस चीज की कमी है केवल वो खाद देनी है आपको। तो इससे क्या है कि जो इनपुट कोई भी चीज डालते हैं तो उसमें पैसा खर्चा होता है, तो बेकार की चीजें खरीद के उसमें डालने से क्या है कि एक किसान का नुकसान होता है। और ये सॉयल हेल्थ कार्ड बनने के बाद आपको पता होता है कि आपको क्या डालना है। हो सकता है उसमें कई सारी जमीनें होती हैं जिसमें जिंक और बोरान की कमी होती है, जिससे बहुत सारी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आती है, उन जगहों पे बहुत कम मात्रा में इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इनको बोला जाता है, तो इनकी भी जरूरत होती है। तो अगर वो थोड़ी सी भी नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खूब खाते हैं लेकिन मल्टीविटामिन नहीं यूज करते हैं। किसी आदमी को हेल्थ इशू आता है और कमजोर लगता है, हो सकता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कमी हो, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन उसकी वजह से वो चाहिए ही चाहिए, उसकी वजह से बाकी और चीजें हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो इससे ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। मेजर न्यूट्रिएंट तो डालना ही होता है किसी फार्म में, ऑर्गेनिक फार्म में या जैसे भी करके, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेशली जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है उसमें आपको पता होता है कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है और क्या कमियां हैं और उस पर्टिकुलर खेत में क्या डालना है आपको। तो इससे क्या है कि रिसोर्सेस आपको इनपुट के रिसोर्सेस कम लगेंगे और फसल जो है अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी उसमें।
1: सर, कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने जैविक कृषि को मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के किस प्रकार योगदान दिया है?
0: ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें एक चीज ये देखना है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट
1: जी,
0: जैसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे सब्जियां यूज करते हैं, ताजे फल यूज करते हैं, इन सब चीजों को हम लोकल लेवल में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल लेवल में इसका अवेयरनेस नहीं है, उसको मान लीजिए डिस्टेंट मार्केट में आपको भेजना है दूर जहां पे उसका वाजिब दाम मिलेगा। जैसे हमें अभी टमाटर का दाम ठीक ठाक मिल रहा है लेकिन जो मेन सीजन होता है उसमें तो बहुत कम मिलता है, और यहाँ पे तो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक करके और मैदानी इलाकों में जो टमाटर की पैदावार हो रही है उसी के दाम में अगर बेचेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना,
1: श्रम का कोई मूल्य नहीं मिलेगा।
0: जी, अगर ऑर्गेनिक हम कर रहे हैं तो उसका दाम भी मिलना चाहिए ऑर्गेनिक के हिसाब से। तो हम ऐसी चीजों को प्रमोट करें, पहली चीज तो ऐसी चीजों को प्रमोट करें जो दूर तक डिस्टेंट मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत दिनों तक खराब ना हो। जैसे यहाँ पे कई सारे फलदार पौधे हैं
1: जी।
0: जैसे चेस्टनट और वॉलनट को ओखर बोलते हैं, च्यूरी है, इन सब चीजों को स्पेशली दो, चेस्टनट वॉलनट, कटूस और ओखर, ये दो फसल ऐसी हैं, फलदार फसलें ऐसी हैं कि इनको आप छोटे स्तर पे मतलब पौधों की हाइट छोटी करके उसकी तकनीकी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे करके उसका कमर्शियल खेती कर सकते हैं। जैसे आम हुआ करता था पहले जंगलों में हुआ करता था, लेकिन ग्राफ्टिंग करके उसको छोटा बनाया गया, अभी कमर्शियल खेती की जा रही है उसकी। ऐसे ही ऑर्गेनिक में बढ़िया मुनाफा लेने के लिए हमें करना क्या है कि जो हमारे लोकल रिसोर्सेस हैं जैसे चेस्टनट, वॉलनट, कटूस और ओखर, इनको किसी तरीके से फलों की लंबाई, पौधों की लंबाई छोटी करनी है और उसको कमर्शियल कल्टीवेशन के इसमें लाना होगा। और उसमें फायदा क्या होगा कि क्योंकि ये नट्स हैं, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद इसको प्रोसेस करके आप इवन 6 महीने साल भर तक रख सकते हैं और विदेश के मार्केटों में इनका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। जैसे हम लोग अमेरिका से अभी वॉलनट, आलमंड वगैरह मंगाते हैं, तो हम सिक्किम से अपना ओखर बोल सकते हैं, कटूस बोल सकते हैं, सिक्किम का स्पेशल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा स्टेट टोटली ऑर्गेनिक है, तो इनका बहुत प्रीमियम प्राइस मिल सकता है। तो इस बारे में ध्यान दें। और अभी हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी जो पेरिशेबल चीजें हैं उनको वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। जैसे हमें टमाटर जिस सीजन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसको क्या करेंगे, बहुत कम दाम में बेचना अच्छी बात नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, टमाटर से केचप बना लिया, सॉस बना दिया, ऑर्गेनिक केचप सॉस, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जो टमाटर 10 दिन में खराब होने वाला है आपको 6 महीने रख सकते हैं उसको,
1: और उसका मूल्य भी सर आपको मिलना चाहिए, वो तो कृषक के लिए भी
0: जी मूल्य तो तभी मिलेगा, ये निगोशिएशन पे चलता है सारा कुछ। तो प्रोडक्ट जितने दिनों तक आप रख सकते हैं अपने पास, अभी आज के दिन में आप फूल गोभी लेके जाइए मार्केट में, एक हफ्ते तक नहीं बिका तो क्या होगा,
1: सड़ जाएगा,
0: उसको वापस भी लाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों पे या तो आप उस तरह के प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, जैसे हमने बताया कटूस और ओखर, ये दो चीजें हो गई जिसको आप थोड़ी सी भी प्रोसेसिंग करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेसिंग कीजिए, प्रोसेसिंग करने के बाद जैसे एक पेरिशेबल प्रोडक्ट आपका हल्दी है, हल्दी खोदते हैं, उसका डिहाइड्रेट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फिर पाउडर बना देते हैं, पाउडर बना दिया तो उसको आप साल भर रख सकते हैं
1: जी।
0: तो उसको आप मार्केट में बेचिए, यहाँ ऑर्गेनिक हल्दी की कीमत बहुत ज्यादा है, जैसे मेघा टर्मेरिक, लखडंग टर्मेरिक यहाँ पे खेती करें, उसका कुरकुमिन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है, एक बहुत पॉपुलर मार्केट में जा सकता है प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिक का लेवल लगा हुआ है तो उसके बाद तो पूछना ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे प्रदेश सरकार ने अभी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके रंगपुर के पास में इफको का एक प्लांट डेवलप किया है, जहां पे सारा कुछ लार्ज कार्डमम और टर्मरिक वगैरह प्रोसेस किया जाता है, और वो प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसे और स्टेट गवर्नमेंट का लेवल होने के बाद फिर उसका दाम बहुत बढ़िया दाम मिलता है।
1: सर, सिक्किम में जैविक खेती की सफलता में किसान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का क्या भूमिका है?
0: कोई भी चीज हो उसमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग की तो बहुत ही जरूरत होती है। जब तक चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा उस फील्ड में कैसे जा सकते हैं। जैसे कहीं लड़ाई हो रही तो आपको निहत्थे भेज दिया जाए लड़ाई में तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना।
1: जी, जी, जी।
0: तो ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। नहीं तो आप देखे होंगे कि सोसाइटी में क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं और एंड यूजर में कुछ और मैसेज जा रहा
1: है,
0: कम्युनिकेशन गैप होके जाता है।
1: जी सर।
0: तो ये ट्रेनिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर ट्रेंड टेक्निकल मैन पावर से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट टेक्निकल से सीधे फार्मर को या एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो है मास्टर ट्रेनर है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें बहुत एकदम प्रिलिमिनरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिना इसके हम आगे बढ़ना सोच भी नहीं सकते हैं। सर,
1: ये हम जानना चाहेंगे कि हिमालयी क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन का प्रमुख अनुसंधान योगदान क्या क्या है?
0: इसमें तो हम लोगों का काफी कुछ किया हुआ है, ये थोड़े समय में बताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग 2003 से जब स्टेट ऑर्गेनिक की तरफ से कदम बढ़ाया, तब से ही हम लोगों की जितनी भी रिसर्च है सब हमारे काउंसिल ने डाइवर्ट कर दिया कि ICAR सिक्किम सेंटर का सेंटर जो है वो ऑर्गेनिक के अलावा दूसरे एस्पेक्ट पे काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने इस पीरियड में जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, बहुत सारे स्टेट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सिक्किम सरकार को ध्यान में रखते हुए सिक्किम के किसानों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की। जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो एट लेटर स्टेज बाद में चल के जो कागजात की जरूरत पड़ती है तो कागजात जब मांगे गए तो हम लोगों की जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उसके आधार पे सिक्किम सरकार को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है। तो एक सबसे बड़ा हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी है जिनकी वजह से ये प्रदेश ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हुआ है। और अभी भी कोई भी चीज हम करते हैं हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, हम लोग उसी को कुछ चीजें अपडेट कर रहे हैं, रिसर्च मतलब उस पर कंटिन्यूअस रिसर्च चल रही है, कुछ नई चीजें आ रही हैं उसमें, तो वो सारी चीजें रिवाइज टेक्नोलॉजी भी हम लोग प्रदेश सरकार को दे रहे हैं तो, और किसानों के संपर्क में भी हैं हम लोग, तो इस तरह से हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: सर, अनुसंधान प्रसार सेवाओं और तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से आईसीआर सिक्किम किसानों की किस प्रकार से सहायता कर रहा है?
0: अनुसंधान प्रसार सेवाओं में तो हम लोग बहुत ज्यादा हमारे पास बजट नहीं होता, पहली चीज हम बता दें, लेकिन हम लोग टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। जितने भी हमारे केवीके हैं, यहां पे अभी 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अभी 4 ही हैं, 2 अभी नए आने वाले हैं, तो हमारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको हम बताते हैं, तो उसके माध्यम केवल बताते नहीं है, हम जो टेक्नोलॉजी जनरेट करते हैं तो पहला तो हम अपने फार्म पे लगा के उसको जनरेट किया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं केवीके के लेवल पे वो टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, केवीके के फार्म में लगाई जाती है वो टेक्नोलॉजी, वहां पे हम लोगों के मॉनिटरिंग में वो टेक्नोलॉजी केवीके के हर सेंटर पे लगाई जाती है, वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी आई तो उसके बाद थर्ड स्टेप में हम करते हैं वही टेक्नोलॉजी किसानों के खेत पे लगाते हैं, एक जगह एक गांव में केवल एक जगह, वहां किसान हमारी टेक्नोलॉजी हमारी देखरेख में करेगा, और वो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी आती है तो, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाती है अच्छी तो एक किसान ने किया है तो हर किसान वही टेक्नोलॉजी को अपने आप अपना लेता है, तो ये हमारा तरीका होता है। और इस बीच में कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसके बारे में बीच बीच में हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, फील्ड डे करवाते हैं, फील्ड डे मतलब एक जगह जो हमने तकनीकी लगाया हुआ अच्छी है या खराब है जैसी भी है हम चारों तरफ से किसानों को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, उसको हम फील्ड डे बोलते हैं, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। बीच में कभी किसान का विजिट होता है तो उसमें हम लोग किसानों को वो सारी टेक्नोलॉजी अपने फार्म पे भी दिखाते हैं। और दूसरा जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का बात है, जो सहूलियत किसानों को दी जाती है, तो सहूलियत का तो हम लोगों के पास कुछ मैंडेट नहीं है, उस हिसाब से केंद्र सरकार हम लोगों को पैसे नहीं देती है, वो सारी चीजें प्रदेश सरकार को दी जाती हैं, तो किसान लोग मैक्सिमम जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि ज्यादातर मैदानी इलाकों में जो भी संस्थान हैं उनको एक एनईएच प्लान करके प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न हिल, तो उसमें 10% कोई भी इंस्टीट्यूट का जो भी बजट होता है 10% बजट दे हैव टू स्पेंड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आपको 10% उसका बजट खर्च करना होता है। तो हम लाइजनिंग करते हैं उन इंस्टीट्यूट से और यहां पे हम अपने जो डिजायरेबल मतलब जो इनकी जरूरत होती है इनपुट की उन किसानों से हम लाइजनिंग कराते हैं और डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कराते हैं, इस तरह से हम किसानों को भी मदद करते हैं।
1: सर, आप आईसीएआर सिक्किम का केंद्र प्रमुख होने के नाते मेरा और श्रोताओं को भी ये जानने का आग्रह रहेगा कि क्या आईसीएआर सिक्किम द्वारा विकसित ऐसी कोई तकनीक या नवाचार है जिनसे जैविक किसानों को विशेष लाभ मिला है?
0: जी, हम लोगों ने पहले तो 2003 के पहले तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, लेकिन जब स्टेट ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ा तो फिर हमें उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती थी। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी चीजें 2003 के बाद कई सारी चीजों में इंटरवेन किया है और देखा है कि कुछ चीजें कुछ टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छी यहां पे चल रही है अभी, जैसे हम लोगों ने एक दिया है कीवी फ्रूट का प्रोडक्शन, यहां पे अभी लोगों ने लेना शुरू किया है। हम लोगों के सेंटर पे कीवी फ्रूट प्रोडक्शन देख के यहाँ अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर्स बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स उन्होंने यहाँ पे देखा और वहां पे उन्होंने शुरू किया हमारे सेंटर में देखने के बाद, और आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का लीडिंग स्टेट है जो कीवी फ्रूट प्रोडक्शन में जा रहा है। ऐसे कीवी फ्रूट को अगर हम सिक्किम में करें मास स्केल पे तो एक बहुत बढ़िया वेंचर है, क्योंकि जैसे हमने बताया था पेरिशेबल प्रोडक्ट का कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं होता है। कीवी को आप तोड़ने के बाद 2 महीने तक फेंक के भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जंगली जानवरों से इसका नुकसान केवल अक्टूबर के बाद होता है, क्योंकि जब थोड़ा सा मीठापन डेवलप शुरू होता है तब। और इसको अगर हम पहले हार्वेस्ट कर दें, मैच्योरिटी लगभग नवंबर में आती है इसकी, अगर हमने पहले तोड़ लिया इसको तो इसमें खट्टापन रहता है। आप एक बार कीवी खाएंगे फिर दूसरी बार नहीं खाएंगे, तो इसीलिए सिक्किम में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कीवी बढ़िया नहीं है यहाँ का। लेकिन आप उसको पूरा पकने दीजिए, पकने के बाद तोड़ के खाइए, सिक्किम की कीवी से बढ़िया कोई कीवी नहीं मिलेगी आपको। एक तो एक ये हो गया आपको, दूसरा है यहां पे बरसात बहुत ज्यादा होती है आपको पता ही, और यहां पे सारे किसानों के पास उस बरसात से बचने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रदेश सरकार जो बांटते हैं वो ग्रीन हाउस जो बहुत कॉस्टली होता है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक लो कॉस्ट रेन शेल्टर उसको बोलते हैं। अब देखिए आप ठंडियों में आपको जब ठंडी लगेगी तो आप एक 200 रुपए का कंबल ओढ़ के भी ठंडी भगा सकते हैं, और 50,000 की जैकेट भी लगाएंगे तो अभी ठंडी ही भगेगी,
1: काम ऐसा ही होगा जी, इंतजाम अलग अलग है
0: जी। तो अभी उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जिस एरिया को कवर करने के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस बनाते हैं आप 50-60 लाख रूपये लग रहे हैं
1: जी,
0: उसमें हमारे इंटरवेंशन से हार्डली 10,000 रूपये में उतना एरिया कवर हो जाएगा आपको। तो उसमें आप खेती करेंगे तो मेनली बरसात के सीजन में होता क्या है कि आपको केवल बरसात से बचाना है और धूप उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि पौधे का मेन खाना होता है धूप। तो ऊपर से इस तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाइए और साइड में खुला रखिए, जैसे पूरा बंद कर देंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप किया, यहां पे बहुत सारे किसान और इवन प्रदेश सरकार भी इसको एडॉप्ट कर रही है और इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। एक और क्रॉप है आपका एवोकैडो। एवोकैडो यहां के लिए एकदम रेजिलिएंट क्रॉप है। ये तो कुछ चीजें होंगी, अभी हम लोगों का ये एकदम ये प्रोसेस में चल रहा है, हर महीने हो सकता है महीने नहीं निकला, साल में एक या इस तरह की कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ फसलें ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे यहां के लिए अच्छी होती हैं। जैसे एक चीज बताता हूं, यहां पे हम लोग धान काटने के बाद खेत को ऐसे बांझे छोड़ देते हैं, मतलब फेलो लैंड छोड़ देते हैं
1: जी,
0: कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा है कि हमारे IIOR से कोलाबरेटिव रिसर्च हम लोगों ने यहां पे किया है, तो देखा है धान काटने के बाद सरसों आप छींट के लगा देते हैं तो उसमें तिलहनी फसलें आती है, तेल वाली फसलें आती हैं, और उसको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं, बिना पानी के भी हो जाता है। तो ठंडियों में एक और एडिशनल फसल आप ले रहे हैं। इसी तरह और भी कई सारी फसलें हम देख रहे हैं जो, और ऑर्गेनिक सिस्टम में और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन है आपके ICR सिक्किम सेंटर के। सर
1: सर काफी दिनों से हम हर अखबार में एक खेत बचाओ अभियान का कोई ना कोई न्यूज देख ही रहे हैं। सर आपसे, सिंस यू आर ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आपसे जानने का आग्रह रहेगा कि खेत बचाओ अभियान का मूल अवधारणा क्या है और ये टिकाऊ कृषि के लिए कैसे महत्वपूर्ण है।
0: खेत बचाओ अभियान जैसे अभी ज्यादातर ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में फर्टिलाइजर का मिसयूज हो रहा है। जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि इसमें 1% स्प्रे करना है। किसान के पास जब वो जाता है या दूसरे, जैसे हमने बताया था कम्युनिकेशन गैप होता है, तो उसके बाद इतना ज्यादा क्वांटिटी में यूज होना शुरू होता है कि वो नुकसान करता है। शुरू में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमारा वीट की जो वेराइटीज हैं उसके साथ में फर्टिलाइजर जरूरी था, क्योंकि बिना उसके अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता था, तो ये सारी चीजें इंक्लूड की गई। लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, खेतों में हम यूरिया DAP ये सब यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि खेत की जो मिट्टी है धीरे धीरे मरने लगती है। पहले साल आपने 1 किलो जहां पे यूरिया DAP डाला, जितना उत्पादन हुआ बहुत अच्छा उत्पादन होगा, उसी को अब 2 साल के बाद कंटिन्यूस आप यूज करेंगे और यूरिया DAP डालने से आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पैदावार हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या
1: जान खत्म हो रहा है,
0: मिट्टी की जान खत्म हो रही है। 10-15 साल 20 साल के बाद उस मिट्टी में से आप जहां एक किलो डाल रहे थे वहां 50 किलो डालेंगे तो भी उतना जो शुरू में उत्पादन मिला था वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी की पूरी शक्ति निकल रही, एकदम निर्जीव हो चुकी है। तो अभी इसको बचाने के लिए हमारा ये भारत सरकार का एक प्रयास है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे करें कि अभी वेंटिलेटर पे है हमारी ज्यादातर भारत की मिट्टी, तो उसको हम कैसे बचा के ले आए, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, उसमें इंटरवेंशन तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कर सकते हैं, तो जैसे ग्रीन मैन्योरिंग, ढेंचा लगाते हैं उसकी प्लॉइंग कर देते हैं, पानी भर के छोड़ देते हैं, सड़के वो उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और भी सारे न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं। क्रॉप रोटेशन, ये बेसिक चीजें हैं, जैसे अदुआ किसी खेत में लगाया है तो नेक्स्ट 3 साल के लिए उसी खेत में आपको अदुआ नहीं लगाना है, और खेत बनाते समय ये हमारी टेरेस पे सारी जमीनें हैं, मिट्टी हैं, तो इस तरह से अदुआ में खेती करते समय ये मिट्टी की तैयारी करनी है कि बरसात होने के 5 मिनट के अंदर में सारा पानी वहां से निकल जाए जो यहां पे ना रुके, तो वो फसल को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बैक्टीरियल विल्ट वगैरह ये सब जो आती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम कम से कम, अभी ये जो अभियान चल रहा है खेत बचाओ अभियान, इसमें कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करना, ये अभियान मेनली ये, हालांकि इसमें हमारा प्रदेश तो एकदम ब्लेस्ड है कि हम लोग फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि फर्टिलाइजर पे निर्भरता जो है उसके हमारे जो आसपास में चीजें अवेलेबल हैं उनसे कैसे पूरी की जाए, और खेत को वेंटिलेटर पे जो है उसको बढ़िया से थोड़ा हेल्दी बना के मिट्टी को लाया जाए, तो कम से कम चीजों में अच्छा उत्पादन हमें मिल जाए। तो इसीलिए इस अभियान का नाम दिया गया है खेत बचाओ अभियान।
1: सर, क्या जैविक खेती खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है, आपका क्या राय है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि मिट्टी को, आदमी के हेल्थ को, इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, सबको बैलेंस करते हुए चलना है। तो खेत तो अपने आप ही उसमें आ जाता है कि खेत को बचा के पूरे एनवायरमेंट का ध्यान रखना हमें, उसमें मिट्टी का स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी होता है, तो ऑर्गेनिक का एक पिलर ही है मिट्टी का स्वास्थ्य। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% सपोर्ट करता है खेत बचाओ अभियान, इस अभियान को।
1: सर, जैसे हम सबको पता है कि हर बड़ा काम के रास्ते में कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ चुनौतियां आना नॉर्मल है और काफी नॉर्मल है।
0: जी जी।
1: तो सर, ये जानना चाहेंगे कि सिक्किम जैसे सफलता की कहानियों के बावजूद भी पूरा भारत में जैविक खेती के विस्तार में कौन कौन सी चुनौतियां अभी भी मौजूद है बोल के आपको लगता है?
0: इसमें कई सारी चीजें हैं। पहली चीज तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। पहले तो ये बोलते हैं कि अगर हम जैविक में जाएंगे तो जितना जैविक में प्रोडक्शन होगा उससे हम अपनी जनता का पेट भी नहीं भर पाएंगे।
1: अच्छा,
0: पहली चीज तो एक बार में जाने से इसमें तो हो नहीं सकता है। जैविक का, जैविक स्पेशली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में क्या है, इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स और इस केमिकल्स हैं इनको यूज नहीं किया है, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक एग्रीकल्चर का बिजनेस मॉड्यूल है
1: जी,
0: जो टोटली बिजनेस ओरिएंटेड है और इसमें सर्टिफिकेशन है पूरा, एकदम वेल प्लांट सब कुछ है। लेकिन उसका एक आप बोल सकते हैं कि लोअर वर्जन नेचुरल फार्मिंग है जिसमें इनपुट भी कम लगता है और उसमें खर्चे भी कम होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक नहीं भी हो सकता है तो नेचुरल फार्मिंग एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसकी वजह से आप अपने नेचर को, अपने आदमियों का, अपने जानवरों का, पूरा मिट्टी का, सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट में नेचुरल फार्मिंग एक बढ़िया स्टेप हो सकता है।
1: सर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार गठन करने के बाद डिजिटलाइजेशन का जो आपका बढ़ोतरी हर सेक्टर में देखने को मिला है और जाहिर सी बात है कृषि भी उनमें शामिल है, तो सर डिजिटल कृषि, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसेस और ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैविक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे मजबूत कर सकता है?
0: इनका सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। अभी देखिए, हमारे यहां एक बहुत रिमोट एरिया में कोई किसान बैठा हुआ है, उसको मार्केट कहां से मिलेगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो रिमोट में बैठे हुए भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है
1: जी।
0: एक दो बार मान लीजिए अभी कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू वो सिक्किम के रिमोट एरिया से कहें बहुत वीआईपी एरिया में पहुंच सकता है। क्यों?

0: कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड वैसे ही जगहों पे होती है, उनको पता नहीं। अगर ये जो प्लेटफार्म हैं, इन प्लेटफार्म की वजह से कोई भी किसान और इवन हमारे प्रदेश सरकार के जितने प्रोडक्ट हैं ये भी जा सकते हैं। और डिजिटल एग्रीकल्चर तो आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए सही से उपयोग अगर किया जाए तो उससे बहुत फायदे हैं। आज के दिन में हम लोग सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेत में अगर कहीं पे पानी की कमी है सेंसर उसको सेंस कर लेगा कि हाँ इसमें नमी बहुत कम है, तुरंत इरिगेशन सिस्टम चालू हो जाएगा और उस पौधे में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह बहुत सारे उपयोग हैं। अभी ड्रोन का उपयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में कोई भी इरिगेशन करना है, स्प्रे करना है तो बस ड्रोन में इंसेक्टिसाइड वगैरह भरते हैं, बड़े बड़े ऑर्चर्ड हैं उसको ऊपर से स्प्रे कर दिया, आपको नीचे से पूरा मास्क लगा के ह्यूमन सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखना, ऊपर से पूरा एक बार में बहुत कम मैन पावर में बहुत ज्यादा चीजें
1: काम हो जाता है।
0: बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में।
1: श्रोताओं, हम धीरे धीरे इस अंतर्वार्ता का आखिरी मुहिम तक बढ़ रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे भारत में जैविक खेती के भविष्य के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है और इस यात्रा में सिक्किम का क्या भूमिका होगा?
0: सिक्किम तो इस यात्रा में एक लीडर के रूप में काम करना चाहिए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इससे जुड़े रहे हैं शुरू के दिनों से ही।
2: श्रोताले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आईसीएआर का प्रमुख डाक्टर अशोक कुमारसँग लिएको एक अन्तर्वार्ता। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हाम्रो यस प्रसारणलाई सुनिरहनु भएको छ। श्रोता समय यस बेला स्टुडियोको घडी अनुसार अपरान्हको 4 बज्न लागिरहेको छ र अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं अब उसो प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी। प्रेश्रोता, यस जानकारीको लगत्तै पश्चात सुन्नुहुनेछ विशेष फौजी दाजुभाइहरूको निम्ति समर्पित कार्यक्रम स्वर्गाथा। 4:30 प्रस्तुत गर्नेछौ लेप्चा भाषाको कार्यक्रम तुङकुङ तुङलात अन्तर्गत गायक कलाकार छिरिङ डोमा, फुर्बा डोमा अनि छोसङ लेप्चाको आवाजमा सजिएका केही गीतहरू। त्यसपछि वार्ता विषय रहनेछ लेप्चा जातिको आभूषण। 5 बजे सुन्नुहुनेछ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम न्युसिचान अन्तर्गत प्रथम समाचार। त्यसपछि गायक कलाकार सञ्चमान लिम्बूको आवाजमा सजिएका केही गीत अनि ओमा हाङ लिम्बूसँग लिएको एक अन्तर्वार्ता। 5:30 लिएर उपस्थित हुनेछौ सिक्किमे भुटिया भाषाको कार्यक्रम पाङ्गेन मेन्तोक अन्तर्गत गायक कलाकार धेन्देक अनि साथीहरूको आवाजमा केही गीत। त्यसपछि विश्व शरणार्थी दिवसको अवसरमा एक वार्ता। 6 बजे आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ हिन्दीमा समाचार। यसैगरी 6:05 प्रस्तुत गर्नेछौ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत लोअर कम्बल सामदुङ गान्तोक जिल्ला निवासी एउटा प्रगतिशील कृषक ठाकुर प्रसाद अधिकारीसँग गौपालन साथै सब्जी खेती विषयमाथि लिएको एक अन्तर्वार्ता। 6:40, 6:45 अनि 6:50 सुन्नुहुनेछ यस केन्द्रबाट प्रादेशिक समाचार क्रमैले नेपाली लेप्चा अनि सिक्किमे भुटिया भाषामा। 6:55 अनि 7 बजे सुन्नुहुनेछ जिल्ला समाचार पत्र क्रमैले नेपाली अनि लेप्चा भाषामा। यसैगरी 7:05 लिएर उपस्थित हुनेछौ हजुरहरूकै अनुरोध पत्रमा आधारित कार्यक्रम नेपाली अनुरोध संगीत। 7:25 सुन्नुहुनेछ यस केन्द्रबाट नेपालीमा राष्ट्रिय समाचार। 7:35 प्रस्तुत गर्नेछौ पाश्चात्य संगीतको कार्यक्रम। यसैगरी 8:05 समय रहनेछ कार्यक्रम गीत गजलको जस अन्तर्गत सुन्नुहुनेछ गायक कलाकार जसवन्त सिंहको आवाजमा सजिएका केही गजलहरू। 8:30 लिएर उपस्थित हुनेछौ शास्त्रीय संगीतको कार्यक्रम सुरसंसार अन्तर्गत पण्डित सियाराम तिवारीद्वारा ठुङ्गरी गायन। 8:45 अनि 9 बजे आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ समाचार क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा। 8:15 सुन्नुहुनेछ सोही केन्द्रबाट स्पोटलाइट अनि 9:30 नेशनल फिल्म म्यागजिन चित्र भारती। आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट 10 बजे हामी यहाँहरूलाई मनोरञ्जन गराउनेछौ विभिन्न कलाकारहरूको आवाजमा सजिएका केही हिन्दी फिल्मका गीतहरू सुनाएर। यसरी नै हाम्रो आजको अधिवेशन समाप्त हुनेछ रात्रिको ठिक 10:30। श्रोता, यो थियो अब सो प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी। सो पूरा भयो, हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौ। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम शौर्य गाथा।

जय हिंद फौजी भाइयों, आकाशवाणी गांतोक से कार्यक्रम शौर्यगाथा में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं सुनीता सिंह आपके साथ हूं। जी हां दोस्तों, मनोरंजन से भरे इस कार्यक्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बरसात की रिमझिम बूंदों के साथ आपकी भूली बिरसी उन गीतों को जिसने कभी आपके तन मन को भी भिगोया होगा, और आप भी कुछ पल के लिए उन गीतों में जरूर खोए होंगे। गीत ने आपको भी भावनात्मक रूप से छुआ होगा, तो आइए दोस्तों हम सभी उन गीतों में खोकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करें कुछ इस तरह की गीतों के साथ।

फौजी दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज को अभी हम सुन रहे थे फिल्म मंजिल में। वैसे तो फौजी दोस्तों, हम हिंदुस्तानी बहुत ही खुशनसीब हैं, जहां पर हम सभी छह ऋतुओं का आनंद लेते हैं। हर ऋतु की अपनी एक अलग पहचान होती है, पर बरसात की तो अलग ही बात है। बारिश की बूंदें जब धरती को छूती हैं तो सारा माहौल ही खुशनुमा हो जाता है। हर तरफ एक नई ताजगी का एहसास होता है। कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को महकाती है, तो कहीं रिमझिम फुहारे पुरानी यादों को

ताजा कर जाती हैं। हिंदी फिल्मों ने भी बरसात के खूबसूरत मौसम को अनेक मधुर गीतों में पिरोया है, कुछ इस तरह से। सुनते हैं अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, और फिल्म का नाम है गुरु।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिमझिम फुहारे और सुरीले तरानों के बारे में। बरसात में बादलों की गड़गड़ाहट, ठंडी हवाएं और रिमझिम फुहारे मन को एक अलग ही सुकून दे जाती हैं। प्यार करने वालों के बीच जितने भी गीले शिकवे होते हैं, वे बरसात में बूंदों की तरह बरसकर यही एहसास कराते हैं कि अब हर गीले शिकवे को फुहारों के साथ भूलकर बस इसका आनंद लिया जाए और तन मन से हम एक दूसरे को बस प्यार और प्यार ही करें, कुछ इस गीत की तरह।

फौजी दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्मों में जितने भी गीतों को बरसात में फिल्माए गए हैं, वे केवल संगीत ही नहीं बल्कि प्रकृति भी इतनी खूबसूरत दिखती है कि सभी इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। प्रकृति भी इन बरसातों में एक कलाकार बन जाती है। कभी बूंदें ताल देती हैं, कभी हवाएं सुर छेड़ती हैं, तो कभी बादल अपनी गूंज से गीत का हिस्सा बन जाती हैं। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में बरसात को प्रेम, याद, मिलन, बिछड़न और उम्मीद का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि बरसात के गीत वर्षों बाद भी श्रोताओं के दिलों में बसे रहते हैं कुछ इस तरह से।

और जी दोस्तों, बारिश केवल मौसम ही नहीं बल्कि किसानों के लिए वरदान, धरती के लिए आशीर्वाद और लोगों के लिए प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकृति का एक ऐसा संगीत है जो हर मन को अपनी बारिश की बूंदों से शीतलता का एहसास दिला जाती है। प्रेम की शुरुआत, मन की उलझन या जीवन में नया मोड़, बारिश के माध्यम से भी जीवन को एक नया मोड़ देती है। सुनते हैं दोस्तों बातों के ही बीच में कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, बारिश मन में खुशी, उमंग और उल्लास इतना भर जाता है कि बस दिल कहता है कि सारी उम्र बरसात की रिमझिम बूंदों की तरह खुशनुमा बनकर बीत जाए।

सुमंग मेगुसियांग वा थिस्केक्वा बैच कैलाश मनसर यात्रा सेसेबा संगदाबु माउंट कैलाश नु वाखोरी मन कौरास रेन निसाहन आइन नथुलालाम सुकिम खामगुबा खामगुयुक पातुतु ओम प्रकाश माथुले चोगवांग वा हिन्दू हारे नसान इसी कन लथिक संगदाबु हेमो तयान लामदिक सेवारु बहा माउंट कैलाश नु वाखोरी मनसर पांगबोवा बा नगरी परफेक्चर टिबेट तेनरेन सिंगयु हेमो थाके रबा वा आइन थिसके पा बेच हेमो लिकी पांग थिक लामदिक पानु नेची लाइसेंस सोहांगमी थिक सिदा सांबा सोहांगमी फा लिसी कुबा किबी इबा येरो बानु काकले लिकी पांग नुसी यापमी हा मेबी आं वा आइन बा थिसके पा बेच पा थिक जुलाई हेंसिंग नेची निवं तुक्सरे यामा मेनुंग बा वा एन निसाहन थिम्बे हेमो कापसो नु खामदो खिम लक पा लुमिहांग टीटी भोटियान वे वे सोहांगमी नु यामजो बारेन तायुंग मेवे कांदक इनसे बुंग हिम लाम तेंगपी बा इंगोंग आखेप सुमला बचे अल्लानी भग्र संचमान याखथुंगे को इक्ला हेमो सामिगेन समलो तुनुंग लबता खेपसुम सारुंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000

0: 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेबको 213.67 मिटर तदनुसार 1404 किलोहर्टजको तरंगमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआर मोबाइल एप मार्फत पनि हाम्रो यस प्रसारणलाई सुनिरहनु भएको छ। श्रोता समय यस बेला स्टुडियोको घडी अनुसार साँझको 6 बजेर 5 मिनट भइसकेको छ र अब प्रस्तुत गर्दैछौ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

0: श्रोताले तिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं।
1: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
2: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
1: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
2: 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
1: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
2: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम शाखाद्वारा जनहितमा जारी।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: टीएलआई है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: श्रोता यो सुन्नुहोस् मौसम सम्बन्धी एउटा साधारण जानकारी। स्थानीय मौसम विज्ञान विभागद्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार आज राजधानी गान्तोक साथै वरपरका क्षेत्रहरूको अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस अनि न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 30.2 मिलिमिटर रेकर्ड गरियो। आउँदो 24 घण्टाको मौसमी पूर्वानुमान अनुसार आकाशमा प्राय बादल छाउनका साथै हल्का वर्षा हुने सम्भावना विभागले जनाएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मौसम सम्बन्धी साधारण जानकारी। सो पूरा भयो। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं।

0: अनामसा कैलाश मानसरोवर यात्रा अकोर कनौशिबु नोटकुरबु संसा नहानमु अछोकनन सरोंनाथोला थिलंग ग्यामी खेलंग उन्तदोसा नहानसा आको रेमजिंगबुंगथुमो रेंजोंसा जुंगपोन ओमप्रकाश माथुनन रेंजोंग जुंगसा नोटकुर कुरथाक छिरिंग थेंदु बोटियासा छलोटका नहानमु अछोकरेम तारशोक ग्लेटलुंग जुंगपोनन सुंगथोबा।
1: हम सबका सौभाग्य है कि आज बाबा विश्वनाथ मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले चार पांच दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है। और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ।
0: नहानमु अछोक का मोन्त्याम उन लाइजेंस सगेंदोक सोंगनेत उन नोटकोरबु सोंगन छोंग लुंगमात न फुलिथेप का नि थोमो थोपे सनांगसिंग का नोटकोरबु सोंग सरोंग गेंजे का ख्योसिबु निमो उलुमदो मनसुरोवर परिक्रमा का लाटबु लबो आदेशा छ नेथेप को क्यो का ख्योनोंगसिबु चांदी खुन्तोबु निमो नोटकोर आदेशा नहानमु अछोक नुमकुम लबोसा छ का चोंग गोंगतोक का लख्यो लाटनोंगसिबु निबुमो रेंजोंग जुंगसा आयुष बोंगचिनन लोकल गोंगतोक सा रिच पार्क का निदाबो स्वर्ण जयंती मैत्रिया मंजारा का योजना योगा आर्यु मुव छतन का गमली बांबू पेतन सदाम योगा सुयम सुंगलत का अकालिय नोंगशुबो निवुमो रेंजोंसा जुंगपुन ओम प्रकाश माथुर उन गुलन कृथक प्रेम सिंह तामंग नंदा थोपे अरिका अकालिय नोंगशुबो निवुमो ऑपरेशन सदा बावना सा सदाम का ग्याकर मोकमीनन चुग्यम रेंजोंग सलोर जोंगु का निदाबो तारेम हनप्रनबु येंथो का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल लेम जुगलेल थोबु निमो नाम कति कक्यो थाप कक्यो थेप तरक का येंथो आरेसा बोंगचो खुंतु बुगम ल्यांग आरेसा रोंग ओंकुप सोंग येंथो आरेका रुक लुंग रुक्षु ल्यांग फात सोमी कनेक्टिविटी सा छेलत बोंगमित बोंगनन मतबा सिम आथेन लोम छो ओंग सोंगनन येंतन लोम यु का किदक थुपंबु निमो सामथेप साम छो ओंग सोंग रेम बामल्यांग बी सोंग आरे नहानमु लेंटप काटगम पेडिक आरे का आजोम जुकल्यांग छो यंतन थापल्यांग जुकलुंग येंथो दुनपोंग का गेलत सतन का फेंसिंग पोंग थापसिबु यमकला बोनोंग थुबुनिबुमो दमरल सतन का जेंग वाम्बुपे पेयुक पेतन एस आई आर का मिमोंग सोंग रेम अफ्रोन अग्याप का अकालुंग यो सोंगतन का जुका पोंगनन ल्यांगदे दोंग्योप सा ग्यांथो पाक्योंग नंसरोंग ल्यांगदे पबर एस आई आर तन का सक्यम लट रेम तुंगु नांगसिंग बीसोंग पेडिक अरे जिंग थोबु निमो थोपे आरि सा अछो का सा ल्यू का सक्यम लट तुंगु नन दोमथो पबर अन मिमोंग जुमल्यांग पोंग का एस आई आर सा तन का सुट बिलोंग अकुर मतवांबु निमो उन दोमक्यो बुसोंग सा तन का जिंग वांबु लिली चिंगछोंग इनुमेरेशन ड्राइव यांग ने डिजिटलाइजेशन पेडिक सा फान्तो यांग ने बी एल ओ गेंदोक सोंग नन रित थोबु छुग्यु रेम रियु ला ब्लेन लंग सबमिट मत लंग हेंटो मतगत मयोंग लबदन फुनोंग थोबु निबुमो रेंजोंग जुंगसा दुमथो उन कुमोर यो गोंगतोक नन गेजिंग ल्यांग देसा बरफोक ल्यांग सा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम पेडिक का छदवांबु त्योचोंग उन श्रापशोंग देपतम कुमार लाभजोंग पेयुक्रेम लुंगछोंगबुंगमो थोपेसा सुजोगबु सुनिमका गोंगतुकसा दुमथो उन कुमार युक्सा कुलोनपुन छिरिंग तोपगे बोटियानन गुलुन नुंगसा ल्युका अकाले बुंगथोमो लाभजोंग थोपे आरेका नहानमु उन नेटफोनबु बेछोलुंग तरकथेप लाभबु सोंगनला अकाले बुंगथोमो तो इमु इंगा ल्यांगतेनबु उन दिव्याजन रुमतोंग बोंगछि नामछि ल्यांगदेनन मिनोरलत पेडिक पोषण बी पराइबी पेतन प्लोंग सिकनिमफुंगो थोपे दिखबुंगमो थोपे अरेरेम सरोंग लुंगछोंगबुंगमो थोपे का गेंदोक सोंगनन ग्यो काटसा फुलिथेप फुलि आका लेबु अगनबादी लयोग बुसोंगरेम अर्ली चाइल्डहुड केयर उन थपग्युलत सायन्तन पोंग उन इंगा सोंगसा न्यूट्रिशन आजम पोंग सा पेतन प्लोंग लाबजों लुंगलाबुंगमो न्योयुक उन न्योयुक बो रिमतोंग कृथा गेंथोसा गुलुन लुटका लाबो आरिसा पुटबु छ काटन लाबो आरिसा छ समथेप सोंगतेत सुंगबम्बु मिनोर पोबार खेत बचाओ अभियान पेडिक्सा अछोक काछल्युका रेनोक उन अरितार ग्राम पंचायत युनिट सा न्योयुक बु सोंग सातनका बीएससी ल्यांगथो का न्योयुक बु सा सक्यम थोपे लिखबुंगमो थोपे का गेंदोक सोंग उन दोंगब्रिलपन सोंग नन अकालेबुंगथोमो खेत बचाओ अभियान पेडिक नन न्योयुक सा फट पुनतोंग उन थुपलबु न्योत पेयुक पोंग सालहाबजोंग पोंग लेगटबु गोंगछिमबु सक्यमरेम न्योत योगबु सोंग बेका सोवंगम सरोंसा सुलुन अबिदो छोंगबुंगमो। दे लुंगठिंग का गातो इन थारिंग के निचुन सोनम चुकी चाले सेंबना कैलाश मंसूरवा यात्रा नितो निशु चाटू ना युखेन नेकोरपो गोथांगपु बेच की थारिंग नथुला सचम ले याना नांग गेबो थंग रंगसोई गे गो दुलशु गोचुको बे देजुंग की सिक्योंग ओम प्रकाश माथुर छुगी देजुंग जुंग की टूरिज्म रेम्पु थ्रिंग थेंडु बुटिया की कुदुन ना गोथांगपु बेच लो थारचो टेम्बो यांग ना फ्लैग ऑफ फ्यावो नाम्बो बे सिक्योंग छुगी दे सुंगबो नादू
1: हम सबका सौभाग्य है कि आज बाबा विश्वनाथ मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले चार पांच दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है। और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ।
0: Deltu gi goje ni dile lamdupo jipchu shechi tu nyamchi program pyaken additional staff ji thang domti mila jipchu shedun longpo be tepto nang tar lamdupo chu taring genji lepshe gi riwa phyabo phyayo po be dile mansorowar parikramana jun nitu nishu chadu ki che nishu chadin na lepi kodik यपो बे दिले बेच थंगपु खो लेंजे जु जुलाई नितो निशु सारु की छे ची ना गातो लोक्ति लेपशे इन देजु जुं की आयुष लेला की थोरंग गातो की रिच पाक ना सवर्णा जानती मैत्री मंजारी ना ट्विटन गेचे की योगा लपखेन थीम ना जलची योगा निम की ट्विटन ना चाशे की खोडी यपो इन देजु की सिक्योंग ओम प्रकाश माथुर थंग देजुंग की चोची लंबु छो खो लेंगे नि थुतेन यांग ना लेरिम दीना चाबो नांगशे इन ऑपरेशन सद्भावना की क्या क्या फोलो जगर मकमी चांग देजुंग की जोंगु ना यपी तारयांग प्राइमरी लोबडा ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हॉस्टल जोम्यों पोबे लोबडा दी छिलो चिकतों गुब्या दिनचु थेडु मेनबे क्यों ना पचो चुई थन लो जबो बे हॉस्टल दी ना लोब छु सुम छु सोंगा दे छि देसा ये पो थंग थप छंग थंग दा सम ससे इसा छा दिले लो थंग डिजिटल की जंग वी छा का जिम की छा का लासु पो जु लोब दा ना जगर मगमी की यारसिंग तंग मो बे थेन जिन ये पी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन निदु निशु साडु ना मिमंग चुई चंगतो यांग ना पार्टिसिपेशन फरवी थन लो पाक्यों जोंखा मोसे लेखुंग गी थारिंग पाक्योंग जोंखाना एसआईआर गी अवेयरनेस ड्यूकोर नंगले दालन फिनजिन लेरिम फ्यावोबे लेरिम दी फ्यावे कापलो ड्यूकोर दी कॉन्स्टिट्युएंसीस थंग मे योसे इसा साखुंग ना कोरजिन एसआईआर निदु निशु चाडु गी लंदा इमिग्युल थंग इलेक्टोरल स्टुलो बूथ लेवल गी गोजे न्यामचिक न्यामयो फ्याति इनुमरेशन फॉर्म्स टू केबो ना लप्ती लेरिम फ्यावोबे देजो जुंग की लगजो थंग लगथा लेजिन लेखुंग गांतो की स्किल ट्रेनिंग दक्षे थंग छेमशे की लेरिम राइजिंग एंड एसिसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम थंग कोला जो वे यूनिट बर्फो गेजिंग जोंखा ना लेरिम फ्या फ्या म्यो छुपो बे लेरिम दी ना गांतो की लगथा थंग लगजो ई डायरेक्टर छिरिंग तबगे बुटिया छु चिप गेस्ट फ्या ती चाबो नंगबो बे फुम अनि चुंगचुंग मि गेमबो थंग दिव दिव्यांजन देखी लेला नामची जोंखा की ग्यालियों की गोजुक पोषण भी पढ़ाई भी निम्नगाई लेरिम दी थारिंग म्योंचु बो बे निम्नगाई लेरिम दी थुकाप लो ऑफिशियल टीम चु की आंगनवाड़ी योगपो या तो जिप्चु शेजी चु लो गोजु मंडराव चु कर लो जंगदार फिंबो बे रिनोक बीएसी थंग अरितार जीपीयू ना निदो निशु चाडु जून की छे ची ले जून की छे सुमचु थुप खेत बचाओ अभियान सोनम लेंखा की कोजा यांगना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थंग शिंगपे देखी की वो लो शिंगपे खोता यांगना फार्मर अवेयरनेस की लेरिम प्याजिन योपो बे लेरिम दीना गोजे थंग थेंखुंग की यांगना रिसोर्स खेत बचाओ अभियान की शिंगपो चुई नंगशा सोनम की सुमक्योप की खेशन थंग चेंजिक गोलेन दिले युनजिंग सोनम लमचुक पुई अवारनेस सर्टन फ्याव बे धरिंग की निशुर दिखार जो बेन थुजी
2: I'm looking for a life insurance policy that has a low premium, gives a good bonus, and is truly trustworthy.
3: Go for PLI.
4: Along with government employees, all professionals, graduates, and diploma holders can avail the benefits of the PLI policy. PLI is backed by the trust of Postal Department. Contact your nearest post office today or log into indiapost.gov.in.
5: विष्णु के क्षेत्रीद्वारा तयार पारिएको सोरेङ जिल्लाको जिल्ला समाचार पत्रमा तपाई सबैलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् म वन्दना राईबाट यो जिल्ला समाचार पत्र। सिक्किमको सोरेङ जिल्लामा 212 भानु जयन्ती 2026 राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरूको साथमा भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरी युद्धस्तरमा तयारी भइरहेको छ। कार्यक्रमलाई सफल पार्न आयोजक समितिले विभिन्न समितिहरूको चयन गरी समन्वय बैठक गरिरहेको छ। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख संरक्षक सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ रहनु भएको छ भने आयोजक समितिका अध्यक्ष सोरेङ जिल्लाका जिल्लापाल धीरज सुवेदी रहनु भएको छ। 13 जुलाई 2026 कार्यक्रमको समापनका दिन मुख्य अतिथिको रूपमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको उपस्थिति रहनेछ। उक्त कार्यक्रमलाई लिएर गत 12 जूनमा सोरेङ च्याखुङका क्षेत्र विधायक आदित्य गोलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सोरेङ जिल्लाभरिका साहित्यकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विशेष गरी साहित्यिक सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरूलाई समावेश गरिएको जानकारी आयोजक समितिकी महासचिव रजनी पेगाले

0: बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
1: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी,
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई।

0: तो इस तरह की जो योजना है, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखें वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा, जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता
0: है। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है, तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल,
0: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है,

0: परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
0: जी।
1: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
0: जी।
1: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55-56 हजार की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56 हजार एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केन्द्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किये। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: We have been able to achieve that in the first.
7: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
6: They are all designed in India now.
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
8: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रा

0: लिए योगा किया जाता है। और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी यही सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया। लेकिन इस साल वहां की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहां पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहां पर चुन के दी है, और वो वहां के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहां पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहां के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था भरत मंडपम में, दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था जहां पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट एक कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहां थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड की अच्छी जगह है कि वहां बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहां पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहां के कारपोरेशन और वहां के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुषी

0: दृष्टि जो बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भी सीएसआर फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे के लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर ईयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गांव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस देके एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते, तो फिर वहां जाओ। तो ये रोजगार भी बढ़ गया, तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंटरव्यूअर वॉज दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट। This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
5: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन तिक तिक तिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी।

0: सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी, इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रहीं, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरे भैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरे भैया,
0: बात एक रात की।

0: जानवर
1: मेरे संग गुनगुना, कोई गीत सुहाना मेरे संग गा।
0: और राजकुमार सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बलसे हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।